0: गिलास तुम खुवा भी
1: बमंगता काम इन नंबुमंगा केल संसायम बाई सेरों फुकतान नंबुमा इंस फावटन साइन नंबुमा इंस अनोटन समास निन नमी चट्टम सोफा अंड्रासन रासला टेनिस फिजरा न तान्या टेपियां चट्टे ओम्नी रोकूल

0: गिलास तुम कफा भी
1: निसराई बंदे इंजे तिन्या तमसन रुचा का सुबह बाबोका तन तिन्वे आ सतीन अंतानी नहीं नमु दामनु आ मतुगनो आ इरुचा का सुबह बाबोका तियम ने बातफिनरान दे जावा रातिनिशा बातफिनरान रातिनिशा दे यू तुयरानी उजान यानिशा नमुला फुलकु लुए फेनना अन्यंता फेनना अन्यंता लुए फमात तम्तान दे यू उजान या नंतानी न्यू रेमंडे न्यू आवे इन्हें उजान ने दान तुझे जोए जातिया आ अमाल सु जावता न्याय ना कुछ ना आज कुत्ते यंबात फिन रान ती रात सनी शनो बात फिन रान रात सनी दे जो दे उसी से ले रहे मंदिर में ये नो उसी आ मापत्या या नी फ्तीर ना कुंड जरिफ़ मंदे सामा कने जारा मसोंडुन दे रफ़ नो दुवेतन रान नज़ाके ने दे म्यून्ट क्या वन दे मज़ेरन तान पुरन सिम चिंदुन स्लूफ़ बुलन याकत जे उसी से फायदा कोनो ती दे तेवा नुं चिंद ततो चेक Lewe mano valbabena, mano valbabena. De yuzani ni verkwe irpana manuskia atani tani. Fa tamze ftonze tsapa kui valbabena kaili is. Fa seti ambula ambula zambula tam ni valbi futon. De mendi mendi fiaramuna irpana de mamern. De na ratfinara na tenim ni universite de mamerina amin'ny sehatrany lista any amin'ny sehatrany fanaovana fitondrana ny teniny olona fitondrana ny teniny olona zany zay zany no zay zay ny heverako ny tenako a fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: आज तुमको वाह भी
1: अंदेवनी मालगासराय नुमालगासरीनी संजीतिंगे रिफ़म बम्तीन ब्रेरेरी किफ़कस कस चिम्तीन सुन तेन मालगास दिलंदुसी दिलनियंगान फिज़ में नकाबे उन तुकातान सिमिश रहें तेन मालगासिं सुन बुझाने की न्याव अचाने नत फ़ून रसेंड जे पमांगम तेन मालगास इज़ में नकाब रो मांगासियासी चाइन निमा माल रो मालगासियावन बुफात चिन्याव लेला सिन्वावन रामतेन जास जेम्रिसकम रश्निमीच उल नाम्बान तेन निवाइन वतोन लाजन फमा मेनताल जात तेन लाजन जेम जवा मिस्येन चिकेतोर इन्नं तुइन आवन सियावन उया मामाल रेफा चुआस दे हुन हुन सिशन तेन मालागास न्यान रुआ वेंगांब आउको उतेलें चूला जेन चूट चिया फेन पेन जास दे अंदू न्याज जेच लेवन निवाईनी अंदी तुम नियंदेवने
0: शॉट तुम कुला शॉट तुम कुवाव